सुने ते ओले वाहेगुरु गावे ते ओए दाए सुने ते ओले वाहेगुरु बिन से पाप घनेरे बिन से पाप घनेरे

बच्चिया सैदा सैदा बल्ले आरे तो दिया गे यारे दासे गए मारी वाग तो दिया गे

तेरी वड़ी आई कोई ना वो ना जा ने मेरा ना वो ना जाने मेरा सचिया बादशाह कोई ना वो ना जा ने मेरा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की।

चेत आवन का सदका सर्व सुख होवे। खालसे जी की देख तेख फतह चौंकियां टंडे बंगे जुगो जुग अटल रहे। धर्म का जयकार खालसा री सावे बलारे। खालसे जी नु नाम दान सिखी दान गुरमत दान बुद्ध विवेक रात रक्षा दान। खालसे जी नु श्री हरिमंदर साहिब अमृतसर सरोवर जी दे इशनान। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे भगत दर्शन दीदार मेले बुलारे। श्री अकाल।

चक्र चिहन अर भरन जात अर पात नहन जिह रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत केह अचल मूरत अनभव प्रकाश अमितोज कहिजै कोट इंद्र इंद्राण साहे साहान गणिजै त्रिप

नाचत फिरत मोर बांदर करत गोर दामनी अनेक भाव करियो ही करत है। चंद्रमा सीतर न सुर सित पत तेज इंद्र सो न राज भव भूम को भरत है। शिव से तपस्याद ब्रह्मा से न वेद चरि सनत कुमार से तपस्या नानत है। ज्ञान के विहीन काल फांस के अधीन सदा जुगन की चौकरी फिराई फिर।

मोहन दीम तारकते अश्विनि कुमार कते अंसाव तारकते काल बस भय है। पीर यो पैगंबर कते गने न परत इत भूमि इत हो के फिर भूमि ही मिलाए है। जोगी जति ब्रह्मचारी बड़े बड़े छत्रधारी छत्र ही की छाया कई कोस लो चलत है। बड़े बड़े राजन के दावत फिरत देश बड़े बड़े राजन के द्रप को दलत है। मान से मही बो दिलीप कैसे छत्रधारी बड़ो अभिमान भुज दंड को करत है। दार से दिली सर द्रुजोधन से मान धारी भोग भोग भूमांत भूम मिलत है। सिज दे कर

मार बूढ़े जड़ गंग धार डार डार फाद ठग मार मार डार ही डूबे नरक दार मूढ़ ज्ञान के बिना विचार भावना विहीन कैसे ज्ञान को विचार ही ताप के सहित जो पे पाइए अताप नाथ ताप ना अनेक तन घायल सहत है जाप के किए जो पे पायत अजाप देव पूजना सदीव तुही।

देहु राम सीत सोई पूजाओ निवाज ओई मन सब एक पय अनेक को फरमाव है। देवता देव जज गंधर्व तुरक हिंदू न्यारे न्यारे देशन के वेश को प्रभाव है।

जैसे एक दूर ते अनेक दूर पूरत है, दूर के कनु का फिर दूर ही समाहेंगे। जैसे एक नद ते तरंग कूट उपजत है, पान के तरंग सब पान ही कहेंगे। तैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट होए, ताही ते उपज सब ताही में समाहेंगे। केत कछ मच केत उनको करत भज, केत अच वच हो सच उड़ जाएंगे। केत नब बीज अच पच को करेंगे भज, केत को प्रता

ज्यों अतेज में अतेज जैसे तेज लीन ताहि त्यों बज सब ताहि मैं समाहिंगे। कुकत फिरत कित रोवत मरत कित जल में डुबत कित आग में जरत है। कित गंग बासी कित मदीना मकानी वासी कित उदासी के ब्रह्माई फिरत है। करवत सहत कित भूम में गड़त कित सुअ पे चढ़त कित दुख को भरत है। ज्ञान में उड़त कित जल में रहत कित ज्ञान के विहीन जग जारी मरत है। सोध हारे देवता विरोध हारे दानो बड़े।

न कर मंग न पर मंग न जन मंग न जातंग अद्वै खंग वे खंग जो नि स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे पर यंग परा परम प्रज्ञा प्रकाशी यछे दंग छे आद अद्वै अविनाशी न जातंग न पातंग न रूपंग न रंगे नमो आद।

पातन सदृण मित्र सूते भविके भवान यचित्रे नारायंग नरंगंग न रूपंग न रेखंग न लोभंग न चोभंग भूतंग अभेखंग न सत्रंग न मित्रंग न नेहंग न गेहंग सदेवंग सदा सर्व सर्वत्र स्नेहंग न कामंग न क्रोधंग न लोभंग न मोहंग जो नियचयाद अद्वयाजोहंग न जन्मंग न मरणंग न वर्णंग न व्याधंग न रोगंग न शोकंग अभय निर्भादंग अछेदंग अभेदंग कर्मंग काल

देह दुखं कहु औखति रोग के शोक सोखं कहु देव विद्या कहु दैत बानी कहु जाच गंधर्व किन्नर कहानी कहूँ राजसी सात की तामसी हूँ कहूँ जोग विद्या धरे तापसी हूँ कहूँ रोग रहता कहूँ जोग जुगतं कहूँ भूम की भुगत मैं भरम भुगतं कहूँ देव कन्या कहूँ दानवी हूँ कहूँ जच विद्या धरे मानवी हूँ कहूँ राजसी हूँ कहूँ राज कन्या कहूँ श्रेष्ठ की पृष्ठ की ऋष पन्या कहूँ वेद विद्या कहूँ व्योम बानी कहूँ कोक की काव कथा कहानी कहूँ अद्र सारंग कहूँ भद्र रूपं कहूँ मद्र बानी कहूँ क्षुद्र स्वरूपं कहूँ वेद विद्या कहूँ काव रूपं कहूँ चेष्टाचार।

सभाख्या कहूं देव बाने कहूं राज विद्या कहूं राजधानी कहूं मंत्र विद्या कहूं तंत्र सारंग कहूं जंत्र रीतंग कहूं शस्त्र धारंग कहूं होम पूजा कहूं देव अर्चा कहूं पिंगुला चारणी गीत चर्चा कहूं बीन विद्या कहूं गान कीर्तन कहूं मलेज भाख्या कहूं वेद रीतंग कहूं नृत्य विद्या कहूं नाग बाने कहूं गारुडू।

नहीं राग रेख, जय जन्म जात नहीं भरम भेख, जय करम भरम नहीं जात पात नहीं नेह गेह नहीं पितृ मात, जय नाम साप नहीं बर्क ब्याद, जय रोग शोक नहीं शत्रु साथ, जय त्रास वास नहीं देह नास, जय याद अंत नहीं रूप रास, जय रोग शोक नहीं जोग जुगत, जय त्रास आस नहीं भूम भुगत, जय काल व्याल कट्यो नांग, अच्छा स्वरूप अखय अभंग, जय नेत नेत उचरंत वेद, जय अलग

रत दीरत बरमत सोवनम कई यगन होत्र कई देव करम कई कर्तवीर विद्या विचार नहीं तदवतास पायत न पार। कहूं राज रीत कहूं जोग धरम कई सिमृत शास्त्र उचरत सो करम न्यौली याद करम कहूं हस्तदान कहूं अश्वमेध मुख को बखान। कहूं कर्त ब्रह्म विद्या विचार कहूं जोग रीत कहूं वृद्ध चार कहूं कर्त जाच गंधर्व गान कहूं धूप दीप कहूं अर्घ दान। कहूं पितृ करम कहूं वेद रीत कहूं नृत्य नाच कहूं गान गीत कहूं कर्त शास्त्र सिमृत उचार कई भजत एक पग निराधार। कई नेह देह कई गेह वास कई ब्रह्मत देश देशन उदास कई जल निवास कई अगनताप कई जपत उर्द लटकंत जाप। कई जपत जो कल्पं प्रजंत नहीं तदवतास पायत न अंत कई कर्त कूट विद्या विचार नहीं तदव देश देखे मुरार। बिन भगत सगत नहीं परत पान बहु कर्त हो मर जग दान बिन एक नाम एक चित्त लीन फोकटो सर्व धर्माभिहीन।

दंड बली बन जास की ओ फल फूल कली वो मेरा आकाश निवास तंगरज रोजे का दे चंद्र प्रतंग दुत चंद तिन्नी सह दीप दई जय पावक पौन प्रचंड मई।

हाट है न बाड है न घाट बाड होत है, नहान है न बान है समान रूप जानिए, मकीन यो मकान अप्रमान तेज मानिए।

है, ख्याल है, अखंड है, न रोग है, न शोक है, न भेद है, न भंड है, न अंग है, न रंग है, न संग है, न साथ है, प्रिया है, पवित्र है, पुनीत है, प्रमात है, न शीत है, न सोच है, न ग्राम है, न घाम है, न लोभ है, न क्रोध मोह है, न क्रोध है, न काम है, न देव है, न दैत है, न नर को स्वरूप है, न छल है, न छिद्र के विभूत है।

अछेद छेद है सदा, गंज गंज गंज है, अभूत भेक है, बली रूप राग रंग है, न द्वैग है न भेग है, न काम क्रोध कर्म है, न जात है न पात है, न चित्र चिहन वर्ण है, बेअंत है अनंत है, अनंत तेज जानी है, अभूम अभिज है सदा, छिज तेज मानी है, न आद है न व्याद है, अगाध रूप लेखी है, दोख है अदाग है, अच्छे प्रताप वेखी है, न कर्म है न भरम है, न धर्म को प्रभाव है, न जंत्र है न तंत्र है, न मंत्र को रलाव है, न छल है न छिद्र है, न छिद्र को स्वरूप है, अभंग है अनंग है, अगंज से विभूत है,

ग्रंथ सेवा सदा सितस्पति तपस्पति वनस्पति जप सदा अगस्त आदि जे बड़े तपस्तपी विषय किए बेअंत बेअंत बेअंत को करंत पाठ पे किए अगाध आदि देव की अनाद बात मानिए न जात बात मंत्र मित्र शत्रु स्नेह जानिए सदैव सर्वलोक के

रूप राग न रेख रंग न जन्म मरण विहीन आदनाद अगाध पुरख सो धर्म करम प्रवीण जंत्र मंत्र न तंत्र जाको आद पुरख अपार हस्त कीट बिखे बसे सब ठौर में निर्धार जात पात न तात जाको मंत्र मात न मित्र सर्व ठौर बिखे रमे उजे चक्र चहन न चित्र आद देव उदार मूर्त अगाध नाद अनंत आद अंत न जानिए अभिखाद देव दुरंत देव भेव न जान ही जे मरम वेद कतेब सनक औसन के संदन पाव ही न हसेब जाच किन्नर मछ मानस मुर्ग उर्गा पार नेत नेत पुकार हे शिव सक्रौ मुखचार सर्व सपद पतार के तर जाप ही जह जाप आद देव अगाध तेज अनाद मुरत अताप जंत्र मंत्र न आवई कर तंत्र मंत्र न कीन सर्व ठौर रहे ओ विराज धिराज राज प्रवीन जस गंधर्व देव दानो न ब्रह्म क्षत्रिय न माहे वैष्णंगे बिखे विराजे सूत्र भी वह नाहे गुड़ गौड़ न भील भी कर ब्रह्म से एक स्वरूप रात दिवस न मत उर्त न भूमा का सनूप जात जन्म न काल

सोद सोद हटे सभा सुर विरोध दानव सरब गाय गाय हटे गंधर्व गवाय किन्नर गरब पड़त पड़त थके महागव गढ़त गाढ़ अनंत हर हर कहो सबो मिल नाम नाम दुरंत वेद भेद।

कहाँ रंग राजा गवन हरक शोक है कवन, गुरु की रागी गवन कहो तत्म है तवन दोहरा, कवन रिष्ट को पुष्ट है।

चंडा सुर चंडन मुंड विमुंडन खंड अखंडन खून खिते दामनी दमंगण ध्वजा परंगण फणी फुंकार जोड़ जिते सरधार विपर खंड दुष्ट प्रकार खंड पुष्ट प्रहर खंड दुष्ट मथे जय जय हो सीमा का सुर मर्दन भूमा का सल उर्धा थे दामनी प्रहासन सुषम निवासन सृष्ट प्रकाशन गूढ़ गते रक्ता

पणियर भुंगारण बाग बकारण शस्त्र प्रहारण साधमते सहदी संदान अश प्रवाहन बोल निवाहन तेज तुलं जय जय उसी महासुर मर्दन भूमा काश पताल जलं चाचर चमकारण चिच्छुर हारण धूम धुंकारण द्रप मथे दाढ़ विवृतंते जोग जयंते मृज मथंते गूढ़ कथे करण प्रनासन चंद प्रकाशन सूर्य प्रते जन अष्ट भुजे जय जय हो सी मैगासुर मर्दन भरम विनाशन धरम दुजे घुंगुरु घमंकण सत्र झमंकण फणियर फंकारण धरम दुजे अष्टाट प्रहासन श्रेष्ठ निवासन दुष्ट प्रनासन चक्र गते केसरी प्रवाहे सुत सन्नाहे अगम था एक वृते जय जय हो सी मैगासुर मर्दन आद कुमार अगाध वृते सुर नर मुन बंदन दुष्ट निकंदन भ्रष्ट विनाशन मृत मथे काव रूप मारे अधम उधारे नरक निवारे याद कथे किंकणी प्रसोहन सुर नर मोहन सिंहारोहण वितल तले जय जय होसी सब ठौर निवासन बाय पताल आकाशन ले संकटे निवारण अधम उदाहरण तेज प्रकर कण धुंध तबे दुख दोख दहंती ज्वाल जयंती याद अनाद अगाध अच्छे शुद्धता समर्पण तर्क वितर्कण तपत प्रतापण जपत जिवे जय जय होसी सत्र प्रकरण आद नील अगाध अभे चंचला चखंगी अलग भुजंगी तुंद तुरंगण तिच्छ सरे कर कसा कुठारे नरक निवारे अदम उदारे तूर भुजे दामनी दमंके के हरलंके आद अतंके क्रूर कथे जय जय होसी रक्ता सुरखंडन सुंभ चक्रधन सुंभ मथे बारज बिलोजन ब्रतन विमोचन सोच विसोजन कौज कसे दामनी ब्रहासे सुख सरना से सुभ्र सुभासे दुष्ट ग्रसे चंचला प्रंगी वेद प्रसंगी तेज तुरंगी खंड सुरंग जय जय होसी मै खा दुर्मर्दन आद नाद गा दुर्धंग घंट का बिराजे रुण झुन बाजे ब्रह्म बाजे सुनत सुरंग कोकिल सुन लाजे किल बिक भाजे सुकूब राजे।

चाचरी प्रजोदन दुष्ट विरोधन रोष रोदन क्रूर प्रत्यय धूमराज विध्वंसन प्रलय प्रजुंसन जग विध्वंसन शोध मते जाल पा जयंती शत्रु मथन।

दामनी प्रकाशे अंतरनाशे ज्योत प्रकाशे अतुल बले दानवी प्रकार खंड सर्वर वर खंड दुष्ट प्रतर खंड पितल तले अष्टायत बाहन बोल निबाहन संत बनाहन गुड़ गते जय जय होसी मैं खासुर मर्दन आद अनाद अगाध प्रते दुख दुख प्रवचन सेवक रक्षण संत प्रतक्षण।

सुर मर्दन धूम्र विदुंसन आद कथे रक्ता सुर मर्दन चंड चक्र दंदान वर्दन बिडाल बदे सरदार विपरखंड दुर्जन धरखंड अतुल अमरखंड धरम धुजे धूमराज विदुंसन।

कई मूढ़ पत्र पूजा करंत कई सिद्ध साध सूरत सिवंत कई भुलट सूरत सिजदा कराए प्रभ एक रूप द्वै कह लखाए अंशिज तेज अन वह प्रकाश दाता तुरंत अद्वै ना सब रोग सोग ते रहत रूप अन वह अकाल अच्छा स्वरूप करुणा निदान कामल कृपाल दुख दुख

उर्धंग बिरहत सिद्धंग स्वरूप बुद्धंग पाल जुद्धंग अनूप जह रूप रेग नहीं रंग राग अंशिज तेज अनभिजदाग जल धर्म ही बंधन दुरंत जेह नेत नेत निषिद नु चरंत पायो न जाय जय पैर पार दीनान दोग दहता उतार कई गोट इंद्र जेह बान हार कई गोट

अरे रोज ही राज बिलोकत राज करो कुरान की रोज नटार है। कीट पतंग कुजा कुरंग भुजंग भूत भविख भवान बनाए देव देव खपे हंग वेव न भेव लख्यो ब्रह्म शिव परमाए वेद पुराण कतेव कुरान हसेव थके कर हाथ न आए पूर्ण प्रेम प्रभाव बिना पद सिंह किंसरी पदमा पत पाए आद अनंत अकादत वैसो भूत भविख भवान अभ है अंत विहीन अनाथम अपदागत दुख छिद्र छह लोकन के करता हरता जल मै दल मै भरता प्रभ है दीन दयाल दया कर श्रीपद सुंदर श्रीपद मापद है। काम न क्रोध न लोभ न मोह न रोग न शोक न भोग न भय है देह विहीन स्नेह संबोधन नेह विरक्त अगेह छह है जान को देद जमीन को देद जमान को दे।

आसन कोट करे अष्टांग धरे बो न्यास करे मुख कारे दीन दयाल अकाल भजे बिन अंत को अंत के धाम सिधारे।

अत्र के चलैया छिद छत्र के धरैया छत्र धार्य के चलैया महासत्रण के साल है। दान के देवैया महामान के बढ़ैया अवसान के देवैया है कटैया जम जाल है। युद्ध के जतैया विरुद्ध के मिटैया महाबुद्ध के देवैया महामान हूँ के मान है। ज्ञान हूँ के ज्ञाता महाबुद्धता के दाता देव काल हूँ के काल महाकाल हूँ के काल है। पूर्वी न पार पाव हिंगुला हिमालय द्यावे गोर कर दे जी गुण गावे तेरे नाम है। जोगी जोग साध पौन साधना की तेग बांधे अरब के अरब आराध तेरे नाम है। फरा के फिरंगी माने कंधारी कुरे से जाने पच्छम के पच्छमी पछाने निज काम है। मन टम गेल तेरी मन सो तपस्या करे दृढ़ वै तिलंग पहचाने धर्म धाम है। बंग के बंगाली

और गाऊ पे न दीन साध दीन कहियत है। पाई न पार तेज पुंज में अपार सर्व विद्या के उदार है अपार कहियत है। हाथ की पुकार पल पछ पहु जतता है चिट्ठी की चिंगार पहले ही सुनियत है। किते इंद्र द्वार किते ब्रह्मा मुख चार किते कृष्ण अवतार किते राम कहियत है। किते ससुरासी किते सूरज प्रकाशी किते मुंडिया उदासी जोग द्वार कहियत है। किते महादीन किते व्यास से प्रवीण किते कुमेर कुलीन किते जच कहियत है। करते हैं

जान को बचैया है, ईमान को दिवैया है, जमजाल को कटैया है, के कामना को घर है, तेज को प्रचंड है, अखंडन को खंड है, महीपन को मंड है, के स्त्री है न नर है, विश्व को भरण है, के आपदा को हरण है, के सुख को करण है, के तेज को प्रकाश है, पाई है न पार पार अवार हूं को पार, जग की जत विचार सो विचार को निवास है, हिंगुला हिमालय गावे हब सी हल विद्या पूर्वी न पार पावे असत्य नस है, देवन को देव महादेव हूं के देव है, निरंजन अभेव नाथ अद्वया विनाशी है, अंजन विहीन है।

राजन के राजा महासाज होंगे साजा महाजोग होंगे जोग है धरैया ध्रुम छाल के कामना के कार है के बुद्धता को हार है के सिद्धता के साथी है के काल है कुचाल के छीर कैसी छीरावत छाछ कैसी छतरा नेर छपा कर कैसी छप काल इंद्र के कूल के हंसनी से सिंह रोम ही रसी हुसन बाद गंगा कैसी धार चली सातो सिंधु रूल के पारसी पल्लवगढ़ रूपा कैसी रामपुर सूरा से सुरंगाबाद नी के रही झूल के चंपा सी चंदेरी गोड चांदनी सी चंदागढ़ कीरत तिहारी रही मालती सी फूल के फटक सी कैलाशक माऊगढ़ कांसीपुर सी ससी सुरंगाबाद नी के सोहियत है हिमा से हिमालय हर हार सी हलब्बा नेर हंस कैसी हाजीपुर देखे मोहियत है चंदन सी चंपावती चंद्रमा सी चंद्रगीर चांदनी सी चंदगढ़ जोन जोहियत है गंगा सम गंग धार बकान सी बिलंदाबाद कीरत तिहारी की उजियारी सोहियत है फरासी फिरंगी फरासी सके दुरंगी मकरान के मृतंगी तेरे गीत गायत है फकरी कंधारी गोर गखरी कर दे जारी पौन के आहारी तेरो नाम ध्यायत है पूरब पलाऊ काम रूप अगमाऊ सर्वठौर में विराज जहाँ जहाँ जाइयत है पूर्ण प्रताप चंद्र मंत्र दया ताबिना

0: करके नगर वसंदो, लेकिन वो विचारा गरीब प्यारे गुरु का सिख वो किस तरह ये कर सकता। ओनू सगों ये तबका मार लगा के तैनू चाहिदा उस वेले आकर के तू नगर वसंदो। मैं इन्ने उपराले करने कीते, बहुत पैसा 60,000 दमड़ा खर्च करके मैं ये अस्थान खरीदना कीता। ते फिर करके मैंने तैनू की पता एवं साध मांगू इथे बैठिया रहिंदा काम किया धूप बत्ती करनी है दिए जगा करके वेलड़ तू बैठ के इथे मौजा माणदा तैनू की पता। मैं घूम घूम के प्रचार करके पैसा कट्ठा कीता ते अस्थान खरीदया, पूरी जमीन मैंने खरीदनी कीती। ते इन्ना पैसा ला करके मैं सतगुरु महाराज जी दा अस्थान ए शहर नू फिर तो आबाद प्रगट करना कीता। हुण लोकां तो उथे हुण संगत आ करके मैं उथे बैंदा, लोक उथे आ करके मैनू मत्था टेक दे।
1: सेवक सेवा पर
0: तू देख तू क्यों ईरखा करता, तू तो सेवादार है, तू चुप चाप अपने अस्थान की सेवा करना कर। सेवादार दा काम नहीं हुंदा वड़ियां दे नाल माथा पत्ती करनी है। मैं मालक हाँ, ये सारा इलाका मैंने खरीदना कीता, ये घर दा मैं मालक बन गया। हुण तू एथे ना कुछ भी नहीं कह सकदा, तू निका जा सेवादार, वो अपने अस्थान दे विच रह करके सेवा संभाल करना कर। तू ए सेवादार रह करके मैं इथों दा जथेदार समझ लियो, मैं इथों दा गुरु, तू मेरे नाल बराबरी करदा। ते तेरे अंदर दा वो कार्ज करन दी शक्ति नहीं है। हुण मैं अगे वध करके इन्ना वड्डा कार्ज कीता, फिर तो नगर वसाया गुरु घर स्थापित कीता, ते तू मेरे नाल ईरखा करदा। उस वेले जदों अस्थान ही उजड़ गया सी, कोई तख्त आदि की नहीं सी, उस वेले किहदे नाल ईरखा करदा तू? ते सगों प्यारियो ओ उहदा वचन मन लैणा उह तां इक पासे रह गया। इहने ओ महापुरखां दे उत्ते तोमता ला दित्तियां बेईमाना, हुण आमदानी वध गई है, हुण गुरु घर दे विच चढ़त चढ़ावा वध गया, तां करके तेरी निगाह इस पासे होई। पहले पैसा नहीं आउंदा सी, कोई नहीं वेखदा। इस तरह प्यारे ये भी घटनावां होंदियां कई वारी वेखदे आ, कई अस्थान जदों मानता घट होंदी है, आमदनी घट होंदी है, किहदी निगाह नहीं जांदी। जदों प्यारे आमदनी वध जावे, मानता वध जावे, लोक उस पासे उहनूं कोट करदे हन, सरकारां दीआं वी निगाहां उहनां अस्थानां दे उत्ते पै जांदियां, उहनां नूं लगदा कि भाई इत्थे तां बहुत जे बड़ी संगत आ रही, बड़ा पैसा आ रहा, चलो आपां कब्जा करिए, अपने बंदे वाड़िए, इत्थे बिठाइए। हुण उहने गुस्सा करके कह दिता, उस वेले किथे गया जदों आमदनी नहीं सी, कुछ भी नहीं सी, चुप चाप बैठ करके सेवा करदा, ते हुण भी चुप चाप रह, नहीं तां धक्के मार के तैनू बाहर कढ दवांगा। जे जादी हुशारी कीती ना, दुबारा मेरे कोल आया, धक्के मार करके आनंदपुर साहब तो बाहर कढ देना, क्योंकि यह सारी जमीन मैंने हुण खरीदनी कीती। ते इंज जदों वचन कीता, उहने तीन चार अपने मुस्टंडे जिहड़े पाल के रखे उहनां नूं कह दिता, ते उहने उह महापुरख प्यार मत्था टेक के हाथ जोड़ के कहण लगा, भाई तू पाप कर रहा, गुरु घर दे विच ए मैं बर्दाश्त नहीं कर सकदा हां, ए पाप कर रहा, तू पाप ना कर, बेशक तैने काम चंगा कीता। कई बारी ना प्यारियो बंदे तो कुछ गलतियां इस तरह दियां हो जांदियां, ते गुरु महाराज जी प्यारियो बचा लैण तां ही बंदा बच सकदा, नहीं तां इस इहो जी गल हुंदी है। कोई व्यक्ति, मैं एक दृष्टांत दवां प्यारियो, मना भार उहने दुध खरीदना कीता, दुध लियाउणा कीता, वधिया पतीले दे विच पाया दुध नूं, चंगी तरह रेड़का राया, चंगी तरह उहना उबाला दिता, सारा काम जदों हो गया, अखीर दे विच प्यारियो जे कांजी पै गई, उह दुध जिहड़ा किसे काम दा नहीं रहिंदा, सारा उहदा काम विफल चल जांदा। कई बारी प्यारियो कई बंदे इस तरह भी करते हैं कि बहुत चंगे काम करते, लेकिन कुछ प्यारियो उन्हां तो गलतियां जाने अनजाने दे विच कुछ एहो जे पाप हो जाते, जिस करके प्यारियो उन्हां दा ओह भी जीवन जिहड़ा उन्हां दा चंगा पक्ष भी जिहड़ा उहदे हेठां दब जांदा। लोग ओ नहीं वेखदे कि नहीं जी इहने चंगा की कीता, फिर लोग यही वेखदे कि जी इहने गलत की कीता करके।

को कह चौपाई सम सतरै सहस भणी जय अर्ध सहस भुन तीन कहे जय भादौ सुधी अष्टमी रवारा तीर सत द्रव ग्रंथ सुधारा।

राम कथा जुग जुग अटल सब कोई भक्त नेत स्वर्ग बास रघुबर करा सगरी पुरी समेत चौपाई जो एह कथा सुने अर गावे दुख पाप तह निकट न आवे बिशन भगत किए फल हुई आद ब्याज छुए सकै न कोई सम

हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार ओ करे तेरा कार्य सब सवारना सब नागला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या नाही घर तेरा घर ता तेरा सब किछ है जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिन कै मन वसिया वाजे शब्द घनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरे साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शान सुख मन आय वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान किता गुरु विटो जिस दिया एह वडियाइया कह नानक सुनो संतो शब्द धरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित घर सुभागे शब्द वाजे कला जित कर धारिया पंच दूत तुद वस

जात है, होमे कर्मय होमे ए 15 फिट जो निपा होमे किथो पजे किसंज मह जाए होमे एहो हुक्म है पया के खराई होमे दीर्घ रोग है दारू पीस माहे कृपा करे जे अपनी ता गुर का शब्द कमाहे नानक कहे सुनो जनो हित संजम दुख